तभी रिवर्सी आकाशवाणी फलगी एफएम संगाई चैनल दिखनी हजी पुंपम सीधा बुधन लक्चरी सीधे हिदाक नसी की सीधे हिदाक ता खमी नशी लेपा कुंदो अमदी मुक्त्रु बिगी कानव सिंह आहन बदा खमी नसी लेपा कुंदो की कानव सिंह एकुना सीजी नबया बा सरुक्ति मसा पुम्नमकनी गोनोरिया की फरबा हिदाक मनी लेपा कुंदो शी मरुदु इतोल फाइबा फहली अमसुं तिल शिहली फरव हिदाक मखलमनी मना चाबना चिन्या सोकपदा कने चिन्या सोकपदा यामना फरव हिदाक मखलमनी मतंग मुखंगमिन सी मुक्त्रु बिगी कानव सिंह मुक्त्रु बिगी मरुगी मकुदी पुकचतपा अमसुं लाइहो फवद सिजने लोक थुंगबदा उमलगा खौनाव नाव फै मरुगी थाउगदी पोक होगबा अमसुं को की लेना पुमनमक फहली मसीनी नसीगी सीधे हिदाकता लेपा कुंदो अमदी मुक्त्रु बिगी कानव सिंह एकोय एकोयना अफव चिंजाक चादुना हक्चांग साजेल तौदना तुम्ब चाब मतम चाना ngaktuna hakchang phaba khunaima sembada punna saruk yamina si haiba wafama shichu thamjeri hoji pumpha machida tamina si konkam bir kumar singi konjelda moirangthem devendra kumar na sairingba laisholi sei khurumjeri mahigi lairimbi

0: ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯦꯄꯔ ꯋꯥꯟꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:00ꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯄꯔ ꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯠ ꯅꯥꯒꯔꯗꯒꯤ ꯕꯔꯥꯅꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯚꯔꯆ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯁꯨꯔꯤꯌꯥ ꯘꯔ ꯌꯣꯖꯅꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ꯫ ꯀꯨꯠꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯋꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯅꯕ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯍꯪꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯁꯟꯁꯥꯔ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ꯭ꯋ ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯕꯤꯀꯥ ꯁꯤꯡꯊꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ, ꯗꯦꯕꯤꯀꯥ꯫
3: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯤꯔꯟ꯫ IIT ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯁꯤ.ꯑꯦꯝꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯋꯨꯁꯨꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯄꯤꯂꯣꯡꯈꯨꯜꯗ KNAB-ꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯋꯨꯁꯨꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯂꯧꯕꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ KNAB-ꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯦ, ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯦ, ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯦ, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯀꯨꯏꯈꯨꯜꯗ ꯆꯔꯆ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝ 90 ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯦꯜꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ IIT ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯒꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ, ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ, ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ, ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯏꯗꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯨ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ UKNA-ꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯀꯤꯔꯟ꯫
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯀꯥ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

मकल में तेरे थरम क्या संदोक तने तहंजरी बासी आकाशवाणी फालगी मैं कहर शाम हुम दसमीक मंगा दशंदोक चरीबा एफएम संगाई चैनल दिगनी हौजी पुंफा मसीदा पुदने लक्चरी तोंगान तोंगान बा सेसक पसिंग दिगी मणिपुरी फिल्म इसई कुदल गे हान बदा तामी नसी दासु फिल्म बैनर मखाद पुथोखी बा चाइना इंग्लिश सिंह अनी अहुम दा पुथोखी बा फिल्म चाइना असीगी डायरेक्टर ओकेन अमाक चमनी स्क्रीन प्ले अमदी स्टोरी दा युमनाम राजेंद्रनी अमदी निंगसिंग बयाई फिल्म असीगी प्रोड्यूसर शांति थोकचोम तरुक सुबा मणिपुर स्टेट फिल्म फेस्टिवल इंग्लिश सिंह अनी तरुक दा फिल्म असी बेस्ट फीचर फिल्म बेस्ट डायरेक्टर अमदी बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड फंग्रब फिल्म नी फिल्म असीदिगी दिनेश अमदी पुष्परानी अनी अपुनबा खोंजेल दा आर के लालमनीना सैरेंग बनी ओके नमाक चमना सैरांग बिशई खुदोल तोगजरी तामिनसी

0: बकल मतलब की थोड़ों के संदोक्तों ने तहंजरी बासी आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल देगनी हाउसिक मणिपुरी दा मरुए बपाओ ताबिरसी
1: आकाशवाणी फाल हाउसिक फाबु की मरुए बपाओ राज्य की वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी विभाग नंगासी संजन थोंगदलाई बा वेटरनरी ऑफिस दा शेड्यूल कास्ट लोमी सिंह दा सनबी कुंत्रा माथो यन ठोकनी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनएसी प्रोजेक्ट की मकार सिंह बथोरो मसीदा मुख्यमंत्री यमुना खमसान सरुक यागनी कामजोंग जिला की मनुंग चनलाइबा पिलोंगदा मियोय मरी नोमेन कापतुन हालंबगे थौदु अदुबु यानिंग दव फोंदोक्तुना तांखुन नगालोंगना उखुलो मसुंग कामजोंग जिला सिंगे उखुल नगा सिंगना ताब तांखुल नगा सिंगना ताम फम सिंगदा पुंग कुनमरी की सद्दान खोंग जंक्शन बाहुक्रे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की कांगबु अमनंगरांग इरेंगबन मयाय लेकाय दलाइबा मसागी युमदगी आरपीएफ पीएलगी मियोय अमा फारे हाय

0: నపున్నా హుదోకని పౌలు జరే
1: తావిరి వసి ఆకాశవాణి ఫాల్కి ఎఫ్ఎం సంగాయ్ చెనల్ దిగిని
2: दस लाख की लॉटरी मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: हेलो खुंगंग
7: था खुदिंगे रोइबे थांगजा खुंगंगी तौरमद संदोक चबा हेलो खुंगंग लाइव फोन इन प्रोग्राम चलिबा थासी गोइना लाखलिबा तांग कुंतरु थांगजा नुमिदांगी पुंगतरु मिनि निफु खुंगंगी तौरमद संदोक चगनी
6: थमजरी बेहिरमना फौशालकपा मदिलो शेलकपत चिक्सिन गदबा एक्सपर्ट वनलिंगसिन बिगदबा कोंगबान ताबम निमाइसान सिंह सीट एनालिस्ट Department of Agriculture, Government of Manipur.
7: Miamna studio ki telephone number 9362327078 call tawiraktuna thawramasi busaru kyabiyo.
6: Hello, Khungang.

मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर हो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर।

0: ꯈꯨꯗꯥꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯔꯤꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯒꯤꯗꯃ
1: इस जगह की पहचान उसके लोहारों से है। अंग्रेज यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए।
2: मुझे समझ नहीं आता।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

गीत खुदोल के हम सुबदा तमिनसी शंकर महादेवन केरालिशा मोंटेरो अमदी सफकत अमन अली की अपुन बकोंजेल दा गीतमा

0: हेलो,
1: हेलो, तुम द्रिपरा
0: तुम थरूर है?
2: हिंग थी बस कड़ा की फोन होने
0: खंग दिए हे हे तो पदुने तुम इन्हें हेत लगी कि हेलो हेलो
2: मधु की मीठो आई न थी कल मधु फू बस हो
0: अस
2: दे।

0: तिमीहरू को याम छ हाले पुङ क्या त्यारे नुङ्गेमे तुङ पुङ अम तादोरे हा तम नबदौनने आइसे बिपी या वाखलक दोरिको है नङ्गी टेलिफोन सिमदो सिन्दो सिन्दो तुगी फाव बन नङ स्विच अफ थम नत्र दि इमुङ से कैसु नत्र बदु द खङब्रा हा नङ सु केतिङ थावै थावै याम यो मङ रे बन
1: कदाइ दे यारिनो
0: याम न पाइनिङ बदो याम न पाइनिङ बदो आइन स्विच अफ थमु हाइबा नङ नङ करि गिया दे
1: अहिंसिद कनादा टेलीफोन तौरीबुल कनादनो हाँ कनादनो बा इस ओलांग इस है इतुम तो तुम के का है रगा फोन दो पेट पेट पेट पेट कौनजीन का नव थर दना ताजा निंद्रे अहिंसे पोथा द्रे ने
2: नंग है ना पोथा अंद्रे है इमाता नहीं तुम मिले हो बा
1: ताने ना बनी ऐने गांग इस
2: ओ दो एक गांग गांग नंगी मिशन सुसंग हुए दबदा
1: फोन दो ठुगा यूरो फोन के आसुर गे बा ऐने ठुगा रिसे सुम हेन जेला कनुको आदु सु ठुगाई जनी पंगौ दे हंगलो गुम सिको
2: ठुगाई रे कै दोनी इमाना मुले बिनी
1: होय बुङो नंगसे ngak tinga i he sum na ngak paga nate ko mit na u ba lai phata ba haib do nang oi re
2: i
1: na ma na pension ma cha ma phangi yum bhara lu pa li sing tari ni pan khak lai adu ga nang na ma si deis da karor pair ba ga sar da na karor pati नो मगी पुंग कुमारी नुपी कोई बगी वाखंड गाय खोने सकता है ना उन्हें यानी गाने यारी बनो पीसिंग तो बु ऐ दी ना पुंग ऐ ने करम बनो पीसिंग नो
2: नंग गुम्बी नंग सोई उन्हें याद न लाई न त्रा
1: ए ऐ ने लाग पड़ी पाखंग वही री हाउ जिती न जाऊँ हम ले रे ऐ शु ले रे
3: दना हाय हाय करी नोने हेनो होई
1: बा हेमन बनाते नजानु पासे अहिंग सिद्ध नुपी का फोन द चुकले लेते वारी से
3: ओ नुपा दी तरागी मपू ने तरागी मपू टेलीफोन द वारी साब बो कई द वे क्या हाँ नुपी नंग नंग याँ खंबन गनु को लेम थो उ लेम थो उ
1: हो तरागी मपू दो मऊ मऊ की नुपा नुपा तरा तरा ले छाबी की मपू मपा तरा तरा लाग तू ना नजानु पासे फूरा रबदी हिंग लरो ये नहान मुक्सु नत्रो इमा की मांगा अमन लाख तो ना पुरम बतो
3: इमा इपे मा इमा इपे मा अदो हाउ करे हाउ करे आंगी तक को नंग छे सिंखई हुन बिया नोंगा लमदाई सिंखई हुल लफाउ गांग दौरी बरो नंग बा हा नोंगा लमदाई सिंखई हुल लफाउ गांग दौरी बरो नंग बा
1: इमा इउ इउ मखुल से सुपो पोथा दे मोबाइल से पे पे एकोय नंगांग बगम तता दी
3: मा से अदुनी तादबनी ना ने गांगु रनु वा मांग ना बनी बे मा गांगु रनु
1: हो ना खुतोंग त पोथा बि ओ मी ना फोन दो पाई भी रख दरा बदी तो भी रो यंग जनिंग दरे सक पसा बो
2: अस गेम साना बनी है
3: मापा दुना ने कोई निंग था वो ने हेक थोन भी रम दना इशा से ले खुदिंगी हेक लम दल ले ने

0: हेलो हेलो
1: अनीश तुंखरा ब्रा
0: ओ तुंखरे नह कोयरे
1: तीबी द अनीश ओ बद आई आई आम कब करे इच्छा की नुमाई बदो आई सरुम यहाँ बा पंत्रे
0: हाई निंगी बदो करीनो
1: माने ये लिबलम गानू दो आई ने
0: आई हाई दे मान खुमचरीब पाखुम सिंह दो असुम बने थम्मगे
1: नहीं को तमो ऐबु ऐबु नगपी रे रोइद्रा
0: नगपी बा नगपी दबा हाई बसे ऐंगों दा मियाम दा ख्वाई देगी लुगो वा हंगे ऐ कंगे नंगा इबु सुनुसी अतुबु नंगी पंगलुब थमोइदो वरक पंगमुदाबा असोइबु खोंथांनि
1: थबो
0: अइने सु नंगु यान नुसी तुकत सबा सावनिंग बगि सारु खाय आरो बसु नंगबु अदुम नुसी असि हाइदुना सु नंगु ngak pirabadi मियामन करि हाइनि फिदम होइबे यारोइ तुंद नुपी होइबे कयाना नतो उतम नरकने अदुबो पिकली बह अंगांग सिगि सुखल नंग लैना लैना हिंगना हिंगना पुपांग सुद बहाइबदो ओइरे मान तत्तना इमा कदाई सखी हंगे होइ नंगी नाकता मा थंबई आई अदु मा मांगदब माले नंगी नफंद एगी थाजब मांकर
1: माधी माधी करी मत खंगदब रा
0: खंगदे
1: ले बाग साथ खब खबद तीभीद
0: आईन तीभी यंगंदे खबर पहंदे अदुन खंगदे अदुबो सिदगी दी मान हंगबदा आईन करी पौखुमनो पीगदब खंगदे
2: मम्मा पापा
0: अनीस इपा इपा सिदले कैदोरे मंगद मम्मा उरमे बा मंगद नंग उरमे हरि सिताबरा
1: ताई
0: थम्मगे

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम सिदा मुक तामिन से समुराय लाटपम नब चंद्र सिंह शर्मा की खोंजल नंदलाल रोयना सैरिंग मतमिसे अमा

ताबगी सक्ति वाटलब मोयना थेरीब खुदों बविना हॉस्पिटल खाबसोगी ई एन टी डिपार्टमेंट लेबीरीबी डॉक्टर संध्या लता युमलेम्बम एसोसिएट कंसल्टेंगा उनदुना वरी साबा उनदुना वरी साबीगदबी गुरु मयुम सोनिया लोइनन थौरमसिबु पुथोकपी नोंथोमबम रोमा नुमिदांग पुंग मापन मिनिट मंगा लानथोकतुना ताहन जगनी अईबगी खोरजैदगी थौरमसिगी अनिसुब तांगकता तांगबल लान हुमफुतरा माथोइसुब पंदुप थौरमसिबु पुथोकप दतेंगबांगब हेमचान निंगथौजम खोंजेलदा मदि थौरम पुथोकप थोकचोम रेनुबला

0: हेलो।
1: हेलो,
0: ठीक है नोगी, गुड आफ्टरनून जी लेडीज की दोनों तरह।
1: माने माने, गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम ने तराम नोक चली कनाई भी रबनो
0: कोंगो से कौन लगी सफेद लक्ष्मी।
1: लक्ष्मी कोंग बदगी लक्ष्मी
0: कोई
1: नसी
0: कोई
1: की
0: रबनी से दामाई ना फोन आंसर तो गये तो उसे पंग थंग दबा
1: होय होय ममांग तो मुपाव बा टेलीफोन फंग बी जेब्रा
0: हम तो फंग दिए
1: नसी ना आहन बने बको
0: ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯡꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯛꯑꯦꯗ ꯅꯥꯏꯗꯨ ꯇꯣꯛꯎꯔꯕꯅꯦ ꯕꯥꯏ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤꯁꯨ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯛꯁꯃꯤꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
0: ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯎꯖꯀꯣꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯎꯖꯀꯣꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯖꯀꯣꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯐꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯖꯩꯕ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯤ ꯁꯥꯔꯝꯕꯗꯤ ꯄꯣꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯥꯗꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ
1: ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
0: ꯑꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ
1: ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯛꯁꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯖꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯣꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯁꯥꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒꯤ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤꯒꯩꯅ ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒꯤ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯐꯤ ꯆꯜꯂꯒ ꯃꯨꯀꯥꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯡꯒꯩ ꯐꯤ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯩꯇꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤꯁꯨ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ
0: ꯍꯥꯏꯌꯦ
1: ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯒꯦ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯃꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯥꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯀꯛꯄꯗꯤ ꯋꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯗ
1: ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯆꯪꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯄꯅꯣ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯩꯔꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ 13 ꯄꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ 20 ꯄꯤꯕ 10 ꯄꯤꯕ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯡꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯟꯗꯣ ꯀꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯔꯣꯡꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯒꯅ 19 ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯩꯔꯣꯡ ꯂꯩꯔꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯦꯗ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯀꯣꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯔꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕ ꯂꯛꯁꯃꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ
0: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯕꯁꯦ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟ ꯃꯁꯤꯡꯗ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯤꯉꯨ ꯂꯩ ꯁꯥꯕꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯀꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯖꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯂꯛꯁꯃꯤꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨꯀꯣ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ
0: ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ
0: ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून। तराम नक चरी कना आई बिरबनो।
1: मैडम आई हयांग मखा लगाई दगी लाइटोन जम संगवान दी
0: संबानबी कम दौरी गे नुंगाई बिरिब्रो।
1: आदम नुंगाई दरी मैडम।
0: होय होय ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ। ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ।
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯀꯩꯒꯤꯗꯣ ꯇꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯊꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯖꯒꯦꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨꯕꯣꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗ꯭ꯔ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ,
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯄꯨ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦ

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून कनाई बिरबनो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम.
0: गुड आफ्टरनून तराम नोक्चरी मिंग लाइफ अम हाई बिउ
1: सिंगर मई थोंगाम लेकाय देगी मोनांग थेम जेनी.
0: जेनी यम नुंगाई जे जेनी बु आन ममकते द तराम नोक्चरी करी करम बुआ फम पुकत पिगे ने हाई बिउ
1: बाजार थंगान बाजार की लंबी से
0: होय होय
1: जिनगा लंबी से दा अखोगी मताईदा होटल हांगिने ना गाड़ी द तोरगा हांग बमे आमसे अतु अदु की दस नतन अतु पम फम सिन द लईबा कोली बसिंग से सिन मरम मोइदना गाड़ी च पदस बेरा ओ हेले अदुगा अखोइना तनो ओ लईब मतम कनो मोबुदी पैसा बुदी पालिनी अदु ओइरबसु मखम चाब मखम द येंग बिरगा कनो योनबा सी हाइदनिंग मिदा
0: होय होय अखोगी मयाम गिसु पब्लिक की सुकाई दना बा हाइजा बता रे को दुगा इसा की सुकाई दबा मयाम गिसु सोई दबा दुगा मयाम गि सेबा सु तौबोइना कितंग चेकसिन मिना रका मफम जाबा येंग मिना सि हाइबा वाफम ने जेनी ने पुखत पिबा दुकी मतिक फसे अतोप करी करम वाफम सिंग पुखत पिनिंग बे लेडी जेनी हाइबी
1: अतोप दि लेजर दे

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम द तरम नोक चरी कनाई बिरा बनो।
1: गुड आफ्टरनून मिसाम आई डॉक्टर की सावित्री
0: सावित्री लाइफम तो मुतंग मैम पुना खंगमी नसे।
1: मेरा इन भाई बड़ी मामा मताओ ना मताओ वही बजी ना तो रिवर्स तो मामा की संगम थोपने में दां
0: होय होय।
1: एकदम खंग रोजो करा दिखवन थे जा इतना जी पुंग तो आता हल इन पुंग तो आता तो जब जब मामा वो चिकन बिना बाहर ना सुन रही।

0: हेलो हेलो
1: Good afternoon, ma'am. Phone to girl, I can't get my car. I can't get my car.
0: गुड आफ्टरनून तराम नोक चरी मैम तोन बुसु हाई बी ओ करी करम ब वाखलोन सिंग पुखत पिगनी
1: आंग आसे दे छितां नोंगाय बम ता हाय के दावने
0: याई याई नोंगाय ब हाई बी ओ पुन सर यामिन असे
1: ताको मामा दा तांगा दोब म पो म तई जों जे हौ जे ती आम तां खत ले दना तां खा लिंग आइ हि मारा से दा कोई गे आ हि मिन नसे मा के की ईसाई सु जिन जिन ना मयाम न योम म मंदगी ता ना योन दि र प थिन दि र प युम ता ना थिन दि र प मम्मन जी ताबीबा मसोक नुंगाई बलन से रहा है न फोंगो के तो बने था जाए जी जंगी जी जंग तो थागा चनी में थागा चगिया ना
0: होय होय अगर की रेडियो की थोंग दा पुखत पीरगा थागत पीरक पा सोई दना होना जरी बपुंब न सुको थरम ताबीरी बसिंगी माइ कई देगी हाई तारे सोई दना तारम मग सुहेन नुंगाई रम गनी दुगा तारम जे हाई रग सुनक न बसिंग याव रगा सोई दना पाउ दम बीबा मतम द इसा दा चाउ थोक चबा निंगन न बलाई तना हेन हेन मांग लोम द चन खत ना होना मिन रग पा दुगा मणिपुर गी सन मिलोन द सुहेन चाउ खत पा ओइ मिना से हाई बा फम से थम जगे अतो प करी करम बा
1: अकोई गी लमदन अकोई लैका जिदा दे मारक ओइ बने ना होन से नम सपा हाई जे नंबर 1 जाउ सतोइ नि न त खंबोंग जाउ सतोइ नि दो मोइ ना होन से मामन द जिम जाउ ना थिन दिर प जे सो नुंगाय ब लै त्रा दुग ब नुंगाय बा मन भोट मया यो सला प जे मे मो जु नुंगाय त्रो प जे आम नुंगाय रे ताइरा न लै त लाइ रा मया मामा जेंग जें दि ब ला का जोरि नि केन दि दे खाइ ना को
0: होय होय
1: आज रे गे दे कलाई कलाई देख ना लगे इसे इंदौ मैं मैं मैं इंदौ नल मैं आंधे यंग हंडी दौरे में बहुत नमी तो बहुत है कि मैंने कहीं ना ना बहुत है कोई ना साउथ दौरे में तो बहुत नमी तो बहुत है लोग बहुत लाती है ना बहुत है ना बहुत हाथ है ना बगी दमक ता कोई जो लोग बहुत लाती दौरे में मोई गाड़िया काम का तो चौंग दौरे में बहुत लोग बन नोंग आम बताई दी खरा खरा नेगा दिप चला नहीं खरा खरा नेगा दिप चला नहीं खा का दिप प्रा नेगा दिप वन घरे अभी जो है ना खर पाम जब का जो आवाना खर यूं
0: दीबा
1: अरे लाइट चला रहा खर मातें पांग दीबा अरे ये आसुन ना जिंगो खर यूं हन दीबा तेरे को बजे खर जो यूं कर हन इन्हीं केंद्र जो खुदी मक निको अम खत्तक जुआना थे
0: होय होय कोई की पुम नम थरम ताबी रिवसिंग अदोगा मरी लेने बसिंग अदोगा मयाम के से बात होगे काई ना का खंजरी बा हाई जब तारे को याऊ भी रम लगा दी सोई दन लक्षण भी रखा ना अपाम बसिंग मयाम ने मयाम की प्रजा मयाम ने करी पामी है बदो

धन्यवाद आदित्य। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बीबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं आज शुक्रवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत, फिल्म का नाम है रोजा। आवाज दिया है के एस चित्रा और एस पी बाला सुब्रमण्यम ने और इस गीत को शब्द रचना दी है पी के मिश्र ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने। तो सुनिए ये गीत।

दूसरा गाना प्रस्तुत है काइट्स फिल्म से, आवाज दिया है केके ने। शब्द रचना नसीर फराज के हैं और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

तीसरा गाना प्रस्तुत है अतीफ असलम की आवाज में, फत्ता पोस्टर निकला हीरो फिल्म से एक गीत। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं जब वी मेट फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे जब वी मेड फिल्म से श्रेया घोषाल के आवाज में एक गीत, शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं और संगीत से सजाया है प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं किक फिल्म से श्रेया घोषाल और सलमान खान के युगल स्वरों में एक गीत, बोल कुमार के हैं और संगीतकार है मिड ब्रोस अनजान।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर प्रस्तुत हैं परम सुंदरी फिल्म से कृष्णकली साहा और सोनू निगम के युगल स्वरों में एक गीत।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सब से विदा लेने का, लेकिन घर की सुइयां हमें इशारा कर रही है। लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगला चैनल में। तो मेरा इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

गीत माला की थोरम ताबिरे थोरम संदोक्तुने तान जरीबा से मेगहर शाम अहम दासमिक मंगादे संदोक चबा आकाशवाणी फालगी एफएम संगाई चैनल लगी नहीं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी इम्फाल की यूट्यूब लाइव चैट की कुतांग खनबी रखबई सही सिंह मरूप सिंह मथंग मथंग लानथोकना ताहनजरी मथंग की अमुक लौखचरीब चेट असिना मुत्नाइद्रब नुंशिब हाइब फम ए जे मैष्णाम पुष्पराणी अनी अपुनब खोंजल दालोम गुरुमयुमना सैरेंब लम्यानबना सैरांब इसई असि ताजनी हाइदुना इबीरप चेट नि लौखचरीब चेट असिब थाबीरक्लिब मरुप्ति तांजें खुंजाउ तेरा हौबी लैकाइदगी थौदाम मंगिसना असुमना इबीरक्ति मरुप न खोइदाजे हाइदुना खनबीरक्पैसै लानथोकचरी तामिनासी।

0: थरम संदोक्तने तहन जरीबा से आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल देगिने हौजिक चैनल एसी की मखा ताबा थरम सिंह लांथोक पिनबा एखोगे अनाउंसर आरके मास्टर बॉयदा खुसिना जरी
1: थगत चली एखोगे प्रोग्राम प्रेजेंटर कुंद्राकपम आदित्य थरम संदोक्तने तहन जरीबा से आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल ने हौजिक पुंफम सिते लांथोक सरी ngaiko takisi

इसे इसी तामिन की बगल लोइना ना मरुप सिंह ना SMS के कुतांग दा खनबिरक पा एल्बम इसे इसी संदोक चबा लिसेंजरी एक होगी मोबाइल नंबर 7005489767 दा लेफ्ट ना मणिपुरी एल्बम इसे इसी खनबिरक ना बा लिसेंजरी मोबाइल नंबर अमुका ना थांग जगे 7005489767 Matang asida ngai kota kisilo sinjeri tabiram liba pumna makpu adom gi maru mutumlang lentona amukana kurum jeri

0: तुलसी देखो, रक्त देखो, लो शोला, लो चलो चलो कन्हा है
1: सर
0: नीम तो संगल कन्हा
1: फनी सर
0: तुलसी
2: तमो
0: अयिंग असी नंग बो उबसे ऐ ऐ पुंग अगक नंग नंग असी आई गी नक तलाक बसे ऐ ऐ मंग बुम द थोए
2: तमो
0: ऐ नंग बो
2: तमो ऐ ऐ अंगांग नि सूर्य तमो
0: नंग बो अंगांग नि सूर्य
2: तमो
0: क्या हम सौरभ क्लास का क्या तुम अब
2: बेंगलोर द तमी है ऐ ना हनु पादना बेंगलोर द बी तो रिंगे थी मपान लाइरे बनी तमो
0: ओ

लानगी खुलाओ कयासु लावड़ी असुम असुम असुम असुम नक्सी लगले जेधनी लाओगी मखोलदो मयेक सेंग तारकले कोनुंग लानमी सिंगी इवाई इनिल असुम असुम नक्सी लगले अशोक अपन नंगदुना लमखांग द पोथारीबा सगोल तोंग लानमी सिंग पाखत पोई इकाय बोई लैता फम खंगलत्रे लोट से कदाय सीन से कदाय ngaihakti topang khangkide lan soknabada sokpoirabadi kari su ikai ningai leitabani makhoi yedudi apang chumjat tawrubadaini labuklomda makhong sekau sekau toba lanmi karadi magi magi sagol gi khurji chingla chingla duna chatna khri mapuyau daba sagol kaya su chena khrabani मि असीब तरा खक तादुन लेरी चीन बंग मौदब सिंग अदुना ममैददी असीब सारगा उपयाव लोंबयाव तौदुन लेखरे मदुना तनसु इकाई बंगा थोकनबा पामबै लेखिदि मेकअप खरेगी मतुंगदा कोनुंगलान मिसिंग मफम मदु योक्षि लगले साचुंगंबा हजारी तलुचिंगबा लानमी खुटपु बामोन रमा चक्रवर्तीगी लानमी खुटपु अमदी आचार्य गुरु मचानिपा असिना सिंगम कयानी मांगजिल थाबा मकोई खरना मफम मदुद ओइरमलिबा फिफम मदु उबदा ngakchana duna jensilaki lambi gi nakit ta duna leiriba asok apan sing taseng na sireba sing adubu ubada pakat pam sutui sasung namba hajarina nageta koyengingi labna labna sagol matak ta upthairaga laning handukiba lalmi kara uki lauri marum da pakthairaga lot kiba kayadi mahakna ukidre हगोद कांकट पंगमद्रबा सगोल करसु दुदुना लेरी अकोइबगी ओइरमलीबा फिबमदु उरगा हजारीना मथंत खले येनबगी लालुमबा कांगबुना खंगौदना लंदारकपदगी एकोई सगोल तोंबा लानमी तिंगोल काइखरबोय इताउलन हामबा हजारीना लानमी करगा लुइनेना येनबसिं तानरमबयाय अथुबो माइके कदुमदो ओइरिगा हजारी एकोई हुजिक करी तौ बतारी आचार्या गुरुना खांगनिंग ना हंगले गुरुदेव सासुंग नंबना थौगलोंग लुइनना कौरगा हाइरि पंजाउ तमना जथबताय इताउलन हामबगी खुंगुल लीरु बताबु रामा चक्रवर्तीना मागिलान मिसिंग दा हाइरि मफम असिदा कुराल ननागी लान मचामा थौगलम बताय अदु व एकोइ निंगन नबयादे जथबताय अदुगा नखोइ कना कनानो खरना उपन लोंगना तारिबो लान मिसिंग असे मसिंग थिदो हिंग बयाउ रिब्रियंग असि बंगाक तो ओइरबदि लेहो रसनो हौरेन हाइगलकपदा सगाय सारगा पुखल असि एकोय उजिक मखोय बु लाइकन दुना लैथबयाद्रे लान हाइबा सिदि शिब जतपनि आचार्य गुरु ना हाइरि पामबय अमन बु ओइरबसु इबुंग सि मारजित बु एहाक थेम दुना अमुक तंगेंगे लानमिय मना खंगलाउ लाउरि हजारी अशोक अपन नंगदुना उपता लोंता तोरीब लानमी असे कुंठा खतनी गम नमक शीरे फरे दुदी चसिलाओ हजारी ने लावरे हंगलक पदा असी अना खुंगल असे मदुना अचुमली चनी हजारी शासुंग मन खोमी अदुगा हाइरी आइको यांथर असे गुरुदेव ना इबुंग सी थेमनी सुहाइबीरी यारक्टर बदी लान सोकन रुब तावनी अदुगा खुंगमी लानमी सिंग मिकुप ना हुम सिंग बियो नागेता चरुद हाबुंग मरुमदा लानमी लुमदुना लैरमबा यारी खुतलाय सटलिङैदा येकनबना लालु चोमाय लौखिनि को खुचु थांगलेन छतोकलगा चटपियो याथंगा दुम ngakchage लानमी खरना हायरि कोनुंग लानमी सिंग पंथरमद्रे खा पांगना यानथख्रे पंजाउ माइके पांगग्रे पंजाउ पन चोबा अमा थिंदुना लै हायदुना पंजाउ गौखि मसिनी लमित लुनगी हुआ ककसिंग खुलेंगी मैरम पांगब चिदाईदा पाक चाउरबा लौखो लमा यामन तामन संदोख्री मिदियन खैन लाबख्री तामख्री हाइबयाय लौफम असे ख्वाइदगी फौथोक लेब मफमनि मरमदुना लौरेन लौ नत्रगा लौरेम लौ कौई लौफम असेगी मयाय चबुकदा ककसिंग खुलेंगी लंबी अचौबदगी फैजैन कापख्रीबा खोंग लंबी असिबु पंजाउ ताबा लंबी नि हाइदुना पंजाउ लंबी कवि लंबी असी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, वो भी सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सदाबहार गीतों के सिंगार से सजा हर सिंगार लिए आज एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम दोस्तों आप तक पहुंचती है इन प्यारे ख्याल के साथ कि कुछ साथ बड़े खास होते हैं। दिल करता है वो हमेशा साथ रहे, वो हमेशा पास रहे। कहते हैं ना, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वो साथ जब मुलाकातों में तब्दील हो जाए तो समझ लीजिए जनाब कि जिंदगी कुछ और ही ताना बाना बन रही है। इस एहसास में अगर सुर और सांस का अंदाज मिला लेंगे ना, तो वाकई में ये सफर और भी आसान लगने लगेगा। आइए हर सिंगार के अंदाज में आज सुनिए सदाबहार गीत 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तलाश फिल्म से ये गीत आपकी नजर करते हैं। लता जी और रफी साहब की आवाज में गुनगुनाया ये गीत, जिसे अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया एसटी बर्मन जी ने।

0: फिर से तो फरमाना।
1: दोस्तों कहते हैं कि अगर अल्फाज सच्चे हों तो सूरत मायने नहीं रखती, लेकिन शायद जिंदगी का ये अनुभव हर इंसान उम्र के किसी न किसी पड़ाव में जरूर करता है कि शायद इसीलिए लिखा गया है कि उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, हो ना हो पर मन उड़ता परिंदा रखिए। आइए सुने अगला गीत, और मेरे सनम फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे रफ़ी जी और आशा जी की आवाज़ में। इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया ओपी नैयर जी।

100.1 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और हर सिंगार का ये प्यारा अंदाज आप तक पहुंचा रही हूं मैं आपकी अपनी दोस्त। कहते हैं जिंदगी में कुछ चाहते सिर्फ लफ्ज नहीं होती बल्कि दिल की गहरी आवाज होती है। कोई कई बार ये आवाजें हमारी यादों को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करती हैं। कहते हैं लफ्जों की तरतीब मुझे बांधनी नहीं आती गालिब, हम तुमको याद करते हैं, सीधी सी बात है। और ये बातें जब बयां होती हैं तो बड़ा प्यारा अंदाज होता है, फिर वो चाहे निगाहों से हो या अल्फाजों से। आइए सुने अगला गीत आरजू फिल्म से रफी साहब की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और गुजारिश आपसे यही कि आप बने रहिए हमारे साथ. लेकिन जो भी गीत आपने सुना उसके बारे में जरूर आप तक बताना चाहेंगे जानकारी. कुमार सानू साहब की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे. इस गीत को अल्फाज दिए समीर साहब ने और इस गीत को संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव जी ने. श्रोताओं कुछ गीत संगीत अगर एक अलग मूड से हटकर आप सुनते हैं तो शायद मन और दिल एक साथ जुड़ जाते हैं और आप बड़े ही प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हैं. बस यही एक उद्देश्य रहता है आप तक बेहद प्यारे अंदाज में गीतों को पहुंचाने का. और इसी के साथ बस बातों बातों में कुछ बातें बड़ी दिलकश हो जाती हैं और याद आ जाती हैं कुछ ऐसी खूबसूरत यादें जो अल्फाजों में बयां होती हैं. बातों की बात यह है कि किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर दोस्त किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है. जी हाँ, कहना यही चाहते हैं कि बातों की बात ये है कि समझ में ये आया कि ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चराग तो इख्तियार में है. पर दोस्तों आप तक लगातार ये प्रोग्राम में पहुंचाती रहूं ये मेरे बस में नहीं क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के हर श्रृंगार को और आगे बढ़ाएं. तो फिलहाल यहीं समेटती हूं आज के हर श्रृंगार को और आपको छोड़े जाती हूं इस गीत के प्यारे अंदाज के साथ जो कि है सफर फिल्म से मुकेश जी की आवाज में. इस गीत को अल्फाज दिए इंदिवर जी ने और संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने. तो फिलहाल गुजारिश आपसे यही कि सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये खूबसूरत प्यारा.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार

क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार ए के भट्टाचार्य स्टूडियो में आमंत्रित हैं. नमस्कार मिस्टर भट्टाचार्य, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन्स. सेंसेक्स राइजेस 315 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 23,100. Industry needs to be remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran. And global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर हुए बंद. सेंसेक्स 315 अंकों की वृद्धि में रहा. निफ्टी 23,100 के स्तर को पार कर गया. विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना जरूरी है, कहा मुख्य प्रमुख माफ कीजिएगा कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.43% की तेजी से 315 अंक बढ़कर 73,896 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.34% की बढ़त से 77 अंक ऊपर 23,141 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में रुख मिला जुला था. मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% से अधिक की गिरावट में रहा. हालांकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बाजार आज सुबह सपाट खुले थे. अधिकांश सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निचली कीमतों पर हुई खरीदारी के समर्थन से कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार में तेजी आ गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. Sensex rose 315 points, or 0.43%, to close at 73,896. Nifty gained 77 points, or 0.34%, to settle at 23,141. The broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index dropped over 0.1%, while the small-cap 100 index rose more than 0.1%. Markets opened flat this morning amid mixed global cues. Sensex and Nifty stayed subdued through most of the session, but staged a recovery in the final hour, supported by a decline in crude prices and value buying.
1: और कंपनियों पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज तेजी में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 2.8%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक और एशियन पेंट्स का शेयर 1.9% की वृद्धि में रहे. इसके विपरीत ट्रेंड का शेयर 1.4% गिर गया. इंफोसिस के शेयर में 0.8% की गिरावट आई और कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% के नुकसान में रहा.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 28 sectors edged upward, with commodities remaining unchanged. Among the top gainers, consumer durables jumped 1.1%, auto surged over 0.9%, and realty rose over 0.6%. Conversely, hospitals declined 2.1%, healthcare lost 0.5%, and oil and gas, as well as telecommunications, dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,210 companies advanced, 2,146 companies declined, and 220 companies remained unchanged.
1: और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. मिस्टर भट्टाचार्य, कल की जो भारी गिरावट आई उसके बाद आज जो कारोबार हमने देखा है 300 अंकों से अधिक बढ़ा है सेंसेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या रीजन रहा आपके अनुसार?
2: पहली बात तो ये है कि रिकवरी हुई है. कल जैसे आपने कहा कि बहुत भारी गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी बहुत जो वैल्यू बाई हुई है उसके लिए ये उसके लिए जिम्मेदार है. पर ये जो रिकवरी जो हुई है उसकी जो कल की जो जो सेटबैक जो या लॉस जो थी उसे आधी भी रिकवरी नहीं हुई है. तो मार्केट में अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है मार्केट के साथ, और उसका एक प्रधान इंडिकेशन ये है कि आज की भी जो गेंस हुई हैं उसमें भी अगर आप देखें तो FII नेट सेल किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ज़रिए से ये मार्केट में ये चढ़ाव आया है. तो इसका मतलब यही है कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, पर FII की जो बिकवाली के कारण वो मार्केट नीचे जाती है, और जिस समय मार्केट चढ़ती है उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसी तरह वो सटीक रहते हैं पर FII भी निकल जाते हैं. तो इसका एक एक एक कारण यही है कि जो FII अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं किस तरह से इंटरनेशनल यूएस मार्केट का रुख देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे यील्ड्स अभी भी बढ़ती रही है और इसीलिए वो ज्यों ही एक मौका देख

0: अगर रुपए में थोड़ी बहुत जान आ जाती है उससे वो अगर मान लीजिए रुपए थोड़ा अप्रिशिएट करती है तो वो भी एक इंसेंटिव होता है उनके लिए पैसे ले जाने का. और लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम जो है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में वो भी एक बहुत बड़ा कारण है. इतना लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रहा है मार्केट से. अगर आप आईपीओ कहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज जो इन्फ्लोज जो आए हैं उसके लिए लिक्विडिटी है. उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओएमओ लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने के लिए हुआ है वो भी एक कारण है ये इस मार्केट की चढ़ाव और उतराव. उतराव ज़्यादा चढ़ाव कम.
1: तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो FIIs हैं उनका फोकस अलग फैक्टर्स पे है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका शायद दे आर लुकिंग इनवर्ड जो हमारी मजबूती है.
0: देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट की जो एक बुनियादी ढांचा जो बदल रहा है वही प्रतिफलित करता है कि हमारे इसमें अगर आप पिछले 6 साल में ये ट्रेंड देखें कि डायरेक्ट इक्विटी कम हो गई है, इंश्योरेंस कम हो गया है, बैंक सेविंग्स कम हो गया है, पर एक चीज़ जो बढ़ता रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स. और वो म्यूचुअल फंड की जो पिछले 6 साल की जो जो जो आंकड़े दिखते हैं वो करीबन 10% की वृद्धि हुई है. हालांकि सारे जो मैंने कैश बोलिए या डायरेक्ट इक्विटी बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए या पेंशन फंड्स बोलिए, ये सारों में डिक्लाइन हुआ है. और उस डिक्लाइन को कॉम्पेंसेट किया है म्यूचुअल फंड्स ने. और म्यूचुअल फंड्स ही आज डायरेक्ट जो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पहली एक उनकी. तो ये मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में जो अभी भी जो अभी जो जो जो जान जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जरिए बची हुई है.
2: AKB, let's now come to specific sectors. The auto index actually went up by 1%. Some of the prominent companies actually went up by as much as 2 and 2.5%. What other reasons? Borrowing costs are creeping up because of global inflation imported into the economy. Crude oil prices going up, even though they're arrested right now. But do you think that the volume sales going to pick up, smaller cars revival, etc., is that what's reviving sentiment?
0: The auto industry is particularly positively influenced by the revival and good going of the EV sector. If you look at the companies that have done well in the stock market, they are actually companies that are well positioned in the EV sector. If you look at the entire the auto industry's performance and composition of the market share of different kind of categories of vehicles, you see the creeping increase of the EV sector, the electric vehicle sectors. Now that is a growth margin, growth area, and there the margins of the auto companies much higher. So it is that increase in the margins and rising market share. I mean, there was a time about a year ago, the market share of EVs in the passenger vehicle category was less than 33 or 34. Today is almost around 41, 42. Now it is actually, if you take the non-passenger vehicle categories and the passenger vehicles category, you will see that the EV segment is actually becoming very, very substantial. So therefore, the auto sector is responding to that improvement, which is the margins are rising because of the EV segment's growth.
2: So realty also went up by 0.6% today. How do you see auto and realty being linked to borrowing costs? Because you have to borrow in order to acquire both immovable and movable properties for the consumer.
0: The realty is rising because it realizes that the segments that will be positively benefiting them are still very much intact. For example, the consumption and the demand in the economy is still intact. So the realty is responding to those positive signals, which is why the borrowing costs are not a source of relief at all for the Indian companies. On the contrary, the borrowing costs probably will go up as times come. Because in October monetary policy review, you might see the borrowing costs go up. So it is the despite the borrowing cost increase, the demand visibility in the realty sector is what is keeping the realty sector alive.
1: So, Mr. Bhattacharya, अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि uncertainty बहुत है global level पर, लेकिन crude prices अभी for now नीचे आए हैं और लगता है कि शायद कुछ शायद कोई peace deal भी उसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं. और अगर domestic जो मजबूती देखें, जो जिस तरह के GDP figures हमारे आए हैं, जिस तरह के GST collections, जो भी macro indicators हैं, आपको लगता है कि एक का जो undercurrent है वो positivity का है अभी भी जो भारतीय बाजार है?
0: देखिए जरूर, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आपकी जो एक्सेप्ट एक एरिया में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारी, टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जो डिफरेंस जो है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड में थोड़ा बहुत शॉक दिख रहा है. बाकी जो सेक्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम है, और वो आपकी अगर आप कंजम्पशन फिगर को देखें या इन्वेस्टमेंट फिगर्स को देखें, दोनों में भी आपको लगेगा. पर हाँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड में का एक एडवर्स शॉक जरूर इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में जरूर मिला है.
2: निफ्टी बैंक सॉ माइनर रिकवरी टुडे, स्पेशली आफ्टर द करेक्शन येस्टरडे बिकॉज ऑफ द पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय IRDA on the insurance sector, and the distributors being banks themselves, and the income is likely to hit. What is the prospect of banking valuation right now?
0: Yesterday's the setback to the banking stocks was largely because of the insurance regulators' stipulation that they cannot, and banks are in the insurance sector in a big way, they cannot offer the kind of commission they have been offering, which is substantial, 26% commission of sorts. So today, some of the banks which are not so doing so well in the insurance sector, or no, that pronounced in the insurance sector, they have recovered, and not every bank.
1: आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निकेई सूचकांक 1.3% बढ़कर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे. अब रुख करते हैं भारतीय परिवेश में. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, भारत के पास व्यापक विनिर्माण और समग्र सुधारों के माध्यम से विदेशी पूंजी आकर्षित करने की क्षमता है. नई दिल्ली में आयोजित पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 13वें वार्षिक मंच को संबोधित करते हुए श्री नागेश्वरन ने कहा कि उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा है. उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी निर्णय लेने का वैश्विक परिवेश अब बदल गया है, इसलिए इस संदर्भ में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रदर्शन का आकलन करना महत्वपूर्ण हो गया है. श्री नागेश्वरन ने कहा, निवेशक संरक्षण, कर नीति की निश्चितता और स्थिरता, कुशल प्रतिभा की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स भी निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक ब्याज दर का बदलता परिवेश भी पूंजी की लागत और सीमा पार निवेश प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है. तो क्या लगता है आपको, जो प्रतिस्पर्धा की उन्होंने बात कही है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की, और ये जो इम्पोर्टेंट उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, कैसा आप परिदृश्य देखते हैं, या आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और नागेश्वर जी ने पहले भी इसके बारे में इनकी हमारी दृष्टि आकर्षित किया है. जो जिस तरह से हमारी जो देश की आर्थिक वृद्धि दर चली है पिछले 3 दशक में, और इस वक्त जो वातावरण जो है, जो परिस्थितियां जो हैं, वो इतनी अनसर्टेन है, अनिश्चयता से गुजर रही हैं. ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो रिस्क बढ़ गई है, उस समय उनका ये कहना है कि हालांकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें स्टेबिलिटी लानी है, जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा हमारी बरकरार रहे, पर उसके साथ साथ ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए एक नई मॉडल की जरूरत है, और उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं. क्योंकि हर चीज में उनका यही कहना है कि जो अब तक हम करे आ रहे हैं, वो शायद काफी नहीं होगा. आगे हमें और भी जो आगामी काल के लिए हमें उसको
1: जो सुधारों की गति है वो जारी रहनी
0: जरूरी है.
2: In more news, the government, in consultation with the Reserve Bank of India, RBI, will borrow 7,86,000 crore rupees in the second half of the current financial year. This includes a sovereign green bonds issuance of 15,000 crore rupees, according to an official

0: 15 lakh crore of borrowing or 16 lakh borrowing, you have a very small amount of green bond, but it sends out a very positive signal to the market. But the bigger signal to the market, a very reassuring signal at that, is that the government's commitment on 4.4% of fiscal deficit, which is actually what is composed of these borrowings, will, as of now, will remain under check, and the government is preparing for meeting that target. So from 4.4, it is supposed to come down to 4.3 in the current year. And if this number is what the government is planning to borrow in the second half, which means that it will not exceed its borrowing levels.
1: As per the FRBM.
0: As per the FRBM and as far as the commitment that the government made in Parliament. For fiscal hawks and the fiscal consolidation program watchers, this is really a piece of good news.
2: और लेते हैं अगली खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके. सो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा उत्पादन बढ़ा है उसकी बात कही कि 2014-15 में 9 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है. और रक्षा उत्पादों का उन्होंने जिक्र किया, 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए. इसमें कितना इम्पोर्टेंट है नए जो सेक्टर्स हैं उसमें.
0: एक अभी तक हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात, अब लग रहा है कि एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम हुआ है उसके ऊपर वो हमारा दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में हालांकि ज्यादातर मोबाइल फोन का हुआ है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पिछले 3-4 सालों में बहुत ही एक अभूतपूर्व एक वृद्धि, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के आने से इसमें एक नई तेजी आई है, नई रफ्तार आई है. तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों साथ जुड़े जुड़े हुए हैं, तो उनके वो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को काफी बढ़ावा दे सकती है.
1: In more news, SEBI board has approved a slew of reforms to deepen market participation, widen investment avenues and simplify regulatory norms. At its 215th meeting, SEBI approved a comprehensive overhaul of regulations governing portfolio managers. Under the new regulations, portfolio managers will be permitted to invest in IPOs, primary debt issuances and certain foreign securities, while also providing a route for investment in direct mutual fund plans.
2: उधर देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगभग 14.9 अरब डॉलर कम होकर 765.9 अरब डॉलर पर आ गया. अभी भी बहुत एक हेल्दी लेवल है, आप कहेंगे?
0: जरूर, क्योंकि जो एफसीएनआर भी जो करेंसी स्वैप के आधार में जो पैसा आया था वो अभी भी बरकरार है, और इससे दिखा रहा है कि सरकार की जो नीति थी वो एकदम सही जगह थी.
1: The new merchant discount rate framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. National Payments Corporation of India said that the framework is in line with the international payment system. Most global payment systems, including digital public infrastructures, have economic models that support infrastructure and innovation. It added that India's approach continues to prioritize accessibility, scale, and inclusion. The US and Iran are reportedly exploring a phase part when their conflict with Iran, proposing to reopen the Strait of Hormuz in return for the lifting of the US blockade and other economic measures. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Tehran had conveyed a proposal through intermediaries under which the strait would be reopened if its conditions were met. These include an end to hostilities on all fronts within 7 days, the lifting of the US blockade on Iranian ports, the release of frozen Iranian funds and a waiver of oil sanctions. Let's combine this with the crude oil story as well. Global crude oil prices dropped today as markets assess the possibility of a truce between US and Iran. Brent crude was trading 1.7% down at $104 and 82 cents per barrel.

0: WTI crude was trading 2.2% lower at $92.49 per barrel at the time of writing this report. Even Urals oil is at $99 per barrel. Possibility of a truce, slight correction in the oil market. What is the strength you feel in the talks and the response from Iran regarding reopening of the strait within 7 days?
1: The markets are reacting to statements made by the various leaders. And I think the crude oil market has also responded to that. But the very fact that peace talks are going on and there is some hope on the horizon, and if the market prices of crude oil are softened a bit, I think it's good news for India, because India is dependent on this crude oil, and as you rightly pointed out, even Ural prices have gone up. So the discounts that India used to enjoy earlier is no longer there. So that crude oil prices are under check, if not going up, is good news for India, India's external sector and macroeconomy.
2: चलते हैं कीमती धातुओं की ओर. भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 0.9% बढ़कर 152,113 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंची. भारतीय सराफा और आभूषण निर्माता संगठन द्वारा जारी समापन दरों के अनुसार चांदी का मूल्य 1.8% बढ़कर 232,350 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया. जिस तरह की अनिश्चितता है, नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में जो सोना चांदी है उसकी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अभी हम एक स्थिरता देख
1: स्थिरता भी है और फेस्टिवल सीजन का आने वाला है और उस समय इस समय डिमांड भी थोड़ी बहुत बढ़ती है और इस अनसर्टेनिटी में लोग गोल्ड की तरफ सिल्वर की तरफ ज्यादा जाते हैं और सिल्वर के साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट का भी एक संपर्क है.
2: तो आपको लगता है कि कीमतें बढ़ने की
1: संभावना है और इंडिकेशन जो आ रही है आज की मार्केट में भी थोड़ा बढ़ा हुआ.
2: समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
1: नमस्कार. धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end with modest gains. Sensex rises 315 points. Nifty settles above 23,100. Industry needs to remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, मन की गहराइयों में ना वो गीत जो आज भी आपके मनमीत बने हुए हैं, कुछ ऐसे ही अंदाज से सजी गीत मेरे मनमीत को लेकर एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। दोस्तों, कुछ साथ ना दिलों की यादों को समय समय के साथ महकाते रहते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग किस्मत में नहीं दिल में लिखे होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के लिए पर उम्र भर याद रहते हैं। कुछ इन सदाबहार गीतों की तरह, जी हाँ, आइए सुनते हैं गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और फिलहाल ये गीत याराना फिल्म से आपकी नजर करते हैं किशोर जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए अंजन साहब ने और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन जी ने। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत 100.1 मेगाहर्ट्ज।

आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। तो श्रोताओं, इस प्यारी सी चांदनी रात में क्या धरती ये नहीं सोच रही होगी इस चांद को देखकर कि काश ये चांद और करीब आ जाए, कुछ पल के लिए चांदनी सीने में उतर जाए, लगा लूं एक बार गले और तसल्ली हो जाए, कभी तो चांद धरती की बाहों में समा जाए। कुछ प्यारे ख्यालात और ये प्यारा एहसास इस समा को और भी खूबसूरत बनाएगा। ये अगला गीत आप सुनेंगे जब जब फूल खिले फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आइए सुने ये खूबसूरत अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

100.9 MHz पर ये खूबसूरत अंदाज गीत मेरे मनमीत में आप सुन रहे थे श्रोताओं। जी हाँ, फिल्म थी रजिया सुल्तान और आवाज बेहद प्यारी लता जी की। इस आवाज को बोल दिए जानिसार अख्तर साहब ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। आइए ये अगला प्यारा अंदाज सुने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा जी की आवाज में, आनंद बख्शी साहब के बोल और आर डी बर्मन साहब का खूबसूरत दिलकश अंदाज। दिलों की ये प्यारी आवाज।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत के कुछ ऐसे अंदाज गीतों के आप तक पहुंच रहे हैं जो दिल को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं और ये कहें कि दिल की बातों को बड़ी गहराई से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल इस गीत के साथ आपसे लूंगी इजाजत, आपको छोड़े जाते हूं आपके अपने पसंदीदा एफएम गोल्ड के साथ और इस प्यारे से गीत के साथ जो कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत है लता जी की आवाज में। आइए इसको सुनते हैं। इस गीत को अल्फाज दिए हैं अंजान साहब ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव

0: का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए पंजीकरण के लिए योग्य 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को फॉर्म 6 भरने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्य टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under the Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of their service.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allows India to grow and prosper. The Office of the Chief Electoral Officer, CEO Delhi, has directed all district election officers to organize special camps for enrollment of young electors at colleges, universities and other educational institutions across Delhi on 29th and 30th September as part of the Special Intensive Revision 2026. Students between age 18 and 25 eligible for registration will be assisted by BLOs to fill Form 6 for inclusion in the electoral rolls. The CEO has also directed officials to ensure adequate forms and materials, maintain records of application.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबू।

आपके साथ हूं मैं जयति। रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर आएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारे की, रोशनी में है चरागों के तले तारे की, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा। और अगला गीत फिल्म दो रास्ते से, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चांदनी, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक पुराना खत मिला, एक पुराना खत मिला कपड़ों के नीचे किसी संदूक की तह में, जैसे बीते बरसों ने अपनी कोई सांस छिपा रखी हो। स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी। अक्षर थोड़े कांपते हुए फिर भी पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। उस पन्ने पर किसी ने

प्रेम लिखा था किसी ने घर का हाल किसी ने लौट आने की आस और किसी ने बस इतना कि अपना ख्याल रखना कितना छोटा था वाक्य कितना छोटा था वाक्य पर उसमें कितना बड़ा संसार बाहर की दुनिया उंगलियों की गति से आगे निकल गई संदेश क्षण भर में दूर देश तक पहुंचने लगे मगर इस कागज ने अब भी अपनी धीमी चाल नहीं छोड़ी वह आज भी शब्दों के बीच एक चेहरा संभाले है एक आवाज एक मौसम एक ऐसा अपनापन जिसे किसी स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता मैंने खत फिर तय किया इस बार संदूक में रखने के लिए नहीं अपने समय से बचा कर रखने के लिए अपने समय से बचा कर रखने के लिए आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अगला गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम है तीसरी कसम

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म स्वामी से, आवाज है यसुदास की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: देखिए, हमारा फाइव स्टार होटल है, यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। कवाली का प्रोग्राम
1: मैनेजर साहब, किस तक तक हमारा फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं कर देखने वाले नाचने की पंजाबूर पार्टी है
2: ना। काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर।
1: मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओ,
1: हमारे ट्रूप के तरह के प्रोग्राम को करती है।
0: ओ, प्लीज सिट डाउन सोना।
2: शुक्रिया।
0: चाय
2: जी नहीं। मैनेजर साहब, एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसको मैं पूरा सीजन। बाबा
0: ओके,
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है चिराग।

सुन रहे हैं गीत सुहाने। नदी किनारे कांस खिले, नदी किनारे कांस खिले जैसे उजली पात, दूर तलक फैली हुई चांदी की सौगात। हवा चली तो झूम उठे लहराए वन फूल, शरद उतर आई जैसे धरती के प्रतिकूल। नहीं यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप, यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयति। रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे, कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे, लिखावट देखते ही मन कह उठता था हाँ यह उसी का है, हाँ यह उसी का है। किसी पन्ने पर माँ की चिंता खिली थी, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा। हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था, हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था, डाकखाने से निकलकर गलियों पगडंडियों शहरों को पार करता, किसी दरवाजे तक पहुंचता और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता, और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता। तब उत्तर आने में दिन लगते थे, मगर हर दिन उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाता था जिसके आने की खबर एक कागज में बंद थी, एक कागज में बंद थी। और अब चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़ जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है साजन, आवाज है SP बाला सुब्रमण्यम की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्र शेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2026 महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों तक के साथ आयोजित किया जाएगा। देशभर से लगभग 2500 प्रतिभागियों के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य और अन्य ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करने की उम्मीद है। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ये मेला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और सीधी बिक्री को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही है। राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक के चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला या संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आज कुछ बातें नई पुरानी करते हैं। जब पुरानी बातें चली हैं तो हम चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। संदूक में रखे पुराने पत्र समय के सबसे सच्चे दस्तावेज लगते हैं। उनमें किसी का घर का सुख है, किसी बिछड़े मन की कसक, किसी रिश्ते की चिंता और किसी प्रेम की चमक। बाहर दुनिया बदलती रही, कपड़े बदले, घर बदले, शहर बदले, और बदलते बदलते संवाद भी बदल गया। अब शब्द उंगलियों से निकलते हैं और पलक झपकते दूर चले जाते हैं, मगर संदूक में रखे पत्र आज भी अपनी रफ्तार से हमें देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो क्या शब्दों को बचाने के लिए कभी किसी कागज की जरूरत पड़ेगी। और अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है विनोद राठौड़ और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और हम बातें कर रहे हैं कुछ नई पुरानी। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अंदर कुछ सिक्के थे, दो पुराने टिकट और एक तस्वीर। तस्वीर देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना बदल गया है सब कुछ। जब जेब में पैसे कम थे मगर घूमने की इच्छाएं बहुत थीं, एक टिकट ने पूरा सफर याद दिला दिया। एक तस्वीर ने पूरा दिन। हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर कोई छोटी सी चीज पूरा बीता हुआ मौसम एक पल में सामने रख देती है।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयति। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, वो बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, जो बिगड़ गया उसे हर पल दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब अभी इसी वक्त जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को आराम दीजिए, कोई प्यारा सा गीत सुनिए और आने वाले कल की थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है और शायद यही अगली सुबह की कहानी आज रात से शुरू हो रही है। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाय की अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं की पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिणी क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलिग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों को निर्बाध डाक सेवा उपलब्ध कराना है। मंडी में सफल परीक्षण के बाद अब इस व्यवस्था को लाहौल की 11 और दूरदराज शाखाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती स्थितियों के कारण भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होने के साथ साथ सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila.

दोस्तों आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। हमराही कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदना चुक का प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि हम बचपन में लौट गए और एक दूसरे के साथ अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ये गीत था श्री 420 फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने।

और वैसे भी दोस्तों अगर कोई किसी से मिलता है तो हालचाल तो पूछता ही है और कहते भी है ना कैसे हैं आप, तो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे हम हमारा हाल ठीक ना भी हो तो भी हम कहते हैं बढ़िया है, तो सुनने वाले को बहुत एनर्जी मिलती है। आपको बता देते हैं कि आपने ये गीत सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, और अगला गीत आप सुनेंगे हावड़ा ब्रिज फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, कमल जलालाबादी की रचना है और ओपी नैयर का संकेत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 PM, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हमराही और इस कार्यक्रम में आप युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

और जब ऐसे में दिल चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। फागुन फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। कमर जलालाबादी की रचना थी और ओपी नैयर का संकेत। अगला गीत आप सुनेंगे यहूदी फिल्म से, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज में। शैलेंद्र की रचना है और शंकर जयकिशन का संकेत। दोस्तों, इन गीतों को सुनते हुए आज बहुत ही पुराना दौर याद आ रहा होगा।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

याला याला दिल ले गई और आपका भी किसी ने दिल जरूर लिया होगा। उजाला फिल्म से अभी आपने गीत सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे रानी रूपमती फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में है। भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है SN त्रिपाठी ने।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे काला पानी फिल्म से. ये गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है. मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने.

0: दोस्तों बहुत बार अपनों के आगे हम लोग हार मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने हैं और उनको जिताने में यानी सामने वाले को जिताने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है और हम भी यही चाहेंगे कि कई बार आप अपनों को मनाने के लिए अगर कोई आपसे रूठ जाता है तो उसे मनाने के लिए कई बार हार भी जाए तो यहाँ हार मत सोचिएगा क्योंकि रिश्ते को बरकरार रखने में ही भलाई होती है तो इसलिए जहाँ कोई रूठे वो भी अपना तो उसे मनाने की कोशिश कीजिए और झूठ मूठ हार जाने में कोई बुराई नहीं
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई

और दोस्तों ऐसी मुलाकातें ही हमारे लिए एक दूसरे के लिए कब प्यार बन जाती हैं पता ही नहीं चलता. और ये छोटी मुलाकातें जरूर आपसे भी हमें मिलवाएंगी और आप जरूर बताइएगा कि आपको गीत कैसे लगते हैं सुनने पर. और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है. कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदनी की फिलीग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशिया खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरजीत सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एल गोविन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे दोस्तों ने ट्यून कर लिया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. और कार्यक्रम अरुणिमा, इस कार्यक्रम में

छोटी सी बात, फिल्म से ये गीत था येसुदास और आशा भोंसले का गाया हुआ, योगेश का लिखा गीत था और सलील चौधरी की बनाई हुई धुन। अगला गीत आप सुनेंगे आस का पंछी फिल्म से, सुबीर सेन का गाया हुआ है। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

0: का पंछी।
1: दोस्तों, इंसान बहुत सारी आस यानी उम्मीदें जीवन में लगा के रखता है और जीवन भर उन उम्मीदों को पूरा करने में लग जाता है। फिर जो पूरी हो जाती हैं वही उसे खुशी महसूस होती है और फिर और उम्मीदें जगती रहती हैं।

दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि आपकी उमंगें भी ऐसे ही पतंग की तरह बहुत ऊंची उड़ती जाएं और उन उमंगों को आप जरूर पूरा करें। भाभी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे लावारिस फिल्म से, अनजान के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की।

दोस्तों, ये पंक्तियां इंसान के मन में तब आती हैं जब वो हर तरफ से निराश और हताश हो जाता है और अपनी डोर ऊपर वाले को सौंप देता है।

मशाल फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी हृदयनाथ मंगेशकर ने। जमाने को दिखाना है, लेकिन क्या दिखाना है, सुन लेते हैं इस गीत के माध्यम से। पद्मी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले का गाया ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

सरगम फिल्म से ये अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां हैं, दोस्तों वाक्य में ही ये जीवन उतार चढ़ाव का ही तो नाम है। और जिसने जिंदगी को हंसते हुए बिता लिया, वो सारी मुश्किलों से, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है।

दोस्तों, जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज की किरणें दिखती हैं और सूर्य की लालिमा देखती है, वैसे ही हमारे अंदर सकारात्मकता भी आने लगती है और इस जीवन को भी हमें सकारात्मक रूप से ही जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी ना जाने कितनी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों से अच्छे से मिलें, जब भी मिलें

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचानकर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर समूचे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक और विकल्प प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई हैं। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल हैं। इनमें कटक की चांदी की फिलिग्री या तराक्षी वाली तथा संबलपुरी वस्त्र प्रमुख हैं। PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। उधर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values it shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and the more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. Uttar Pradesh government has decided to take strict action against hospitals that fail to comply with the Ayushman scheme's rules and prescribed standards. For this purpose, the state health agency has constituted a 4-member team. The team has also started conducting surprise

नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में आपने ये भक्ति रचना सुनी। संतोष आनंद की लिखी रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगली रचना इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने इस रचना को लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, जब बरसात आती है तो कोई बरसात की बरसात में आनंद की अनुभूति कर रहा होता है तो वहीं को ही सैलाब के पास बैठा हुआ व्यक्ति वहां से निकलने का रास्ता सोच रहा होता है। तो जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है, लेकिन हमें रुकना नहीं होता क्योंकि दुख और सुख दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं।

0: ये गीत आपने सुना भक्ति में शक्ति फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया हुआ इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना थी और सोनी ओमी का संगीत
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात
0: भोर सुहानी कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ